0: पास तुम कुफा भी
1: निफितुंडा ना फिरे ने इंसाने मिला फिउमानन मिला आदि मिला फिए जान अरसाइम मतुंगा ने अंतु को मामुना फुलंतानुरा में अपिफन अंतानुरा इतुना फिरे ने ना रपिच रफा कपिच आओ के नरो चिफो फितक आओ के नरो चललोव नुल फमिला मिउमा ने नरो मिला मिउफा ने नरो Ardina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifine ninti saye na rewa mandaya ndraikitu mitiruwe na rewa mfandaisa na ndraikitu aza me tsara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusha miafa faye na rewa ntupu ndrapitu Madagascar
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: तुम कुफा भी
1: बमंगा तक हम को मिन्ना बुमंगा केल संसाय बाई सेरों फुकतान ना बुमाइंस फावटन साय ने बुमाइंस अनोटन समास निनी ना मिस एट्राम सोफा अंड्रासों रासला देनिस फिजारा ना ताने ते पियांस चाते वामनी रोपुल ते उयोन ना तमले ले फोरुन निस फंड्राइस ना ना रना ना या ते उटन फिट फिटिंग ले प्रेस ना इस मुझांस ते ना प्रेस ना फोटो ने कार्टे मोबाइल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना ते ते से सेम बस सुरात प्रेस ना ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा उटन ये वेतना मेनो तुझी सुन ना तो न तुम रखा है सिस्टी लो इज़